तुम्हें हमें चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, सागर की बाहों में प्यार है कि मौज है कितना, तुमको भी हम

हमारे दिल में अजब ही समझन है, सामने बैठे गाना सामने संबन है। धिकतन धिकतन धिकतन धिकतन धिकतन धिकतन भाभी तुम खुशियों का खजाना, धिकतन धिकतन धिकतन जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दो पैसे लो, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं ना बिन बाजा ना ही बराती, खुशियों की सौगात लेके मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई तुम्हें लौट आना है। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाए, पहला पहला